0: सुनहरे दिनों का सुनहरा गीत गा रहे थे अहमद रुश्दी।
1: साहब जी, जब दरख्त जवान हो तो मैं बूढ़ा आदमी उसकी काट छांट नहीं कर सकता। माली बाबा ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, जब पौधा नाजुक हो तभी उसकी शाखें तराशना आसान होता है, पीछे तने पर कोई निशान तक नजर नहीं आता। माली बाबा ने अपना फलसफा बयान करते हुए कहा, ठीक है करमू बाबा, लेकिन इस बात का मेरे मसले से क्या ताल्लुक? मैंने कुछ उकताहट से सवाल किया। अच्छा ठहरे, पहले मैं आपको अपना तारुफ तो करा दूं। मेरा नाम अरमगान आलम है, शहर में अच्छी नौकरी है। मसला यह है कि मेरा बेटा खालिद अरमगान मेरी बात नहीं मानता और सुनी अनसुनी कर देता है। उम्र उसकी 16 साल के लगभग है। लॉन में खड़ा था कि वो माली बाबा के सामने मुझसे बदतमीजी करता हुआ बाहर चला गया। माली बाबा, खालिद को मैंने क्या नहीं दिया? अच्छा खाना पीना पहनना, अच्छी तालीम, हर सहूलत दी है उसे मैंने। मैंने अपनी बात जारी रखी, साहब पौधा जब छोटा होता है तो उसे खाद और पानी के साथ साथ तराश खराश और तेज हवा और धूप से भी बचाव की जरूरत होती है। आपने खालिद साहब को खाद और पानी तो खूब दिया, लेकिन उनकी तराश खराश से बेपरवाह रहे। इधर आए साहब। माली बाबा मुझे एक दरख्त के पास ले गया जिसका तना बिल्कुल सीधा और खूबसूरत था। देखें, इस तने की खूबसूरती का ताल्लुक उस काट छाट के अमल से है जो मैं इसके बचपन में करता था। जो शाख इसके तने पर उगती उसे प्यार से हटा देता, और आज देखें इसका तना कितना सीधा और खूबसूरत है। माली बाबा ने अपना तजर्बा पेश करते हुए कहा, साहब जी आप मेरी बात समझ रहे हैं? माली बाबा ने मुझे देखते हुए कहा, जी जी आप बात करते रहें। मैंने फौरन कहा, बच्चे भी नाजुक पौधे के मानिंद होते हैं, 10-12 साल का वक्त

लेबर डिपार्टमेंट 16 और 17 सितंबर को बैंकॉक के मैकफर्सन स्टेडियम में दो रोजा लार्ज स्केल जॉब फेयर बिल्डिंग अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस जॉब फेयर के नाम से मुनक्किद करेगा। मुख्तलिफ सनअतों से ताल्लुक रखने वाले लगभग 50 एम्प्लॉयर्स मुतअद्दिद अक़साम की मुलाजमतों के मौके पेश करेंगे। तकरीब के दौरान एम्प्लॉयर्स इन आसामियों को नुमाइश के जरिए मुतारिफ कराएंगे, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद से बातचीत करेंगे और मौके पर ही दरख्वास्तें वसूल करेंगे। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस जॉब फेयर में शिरकत का मौका जरूर हासिल करें, जो सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। शिरकत करने वाले इदारों और दस्तियाब आसामियों की तफसीलात के लिए बराए करम मुलाहिजा कीजिए www.jobs.gov.hk। दूसरों को अपनी ज़ात पर हंसने का मौका दें और उम्दा और बरवक्त मजाक की खुद भी दाद दें और दूसरों की तरबियत भी करें ताकि लतीफ़ बात कहने सुनने का रिवाज हो सके। लतीफ़ बात हज़ार फ़लसफ़ों पर भारी होती है और कानों से सीधी दिल में उतर जाती है। हाफिज़ा उसे यूं कबूल करता है कि बात कभी भूलती ही नहीं। लाहौर का वाकया है कि एक मौलाना अपनी गाड़ी चलाते हुए एक यकतरफा सड़क पर जा रहे थे। एक खातून जिन्हें शादी में शिरकत करने में देर हो रही थी, बोखलाहट में कानून को तोड़ते हुए ममनू सम से गाड़ी ले आई और दोनों गाड़ियां मेंढों की तरह भिड़ गईं। खातून और मौलाना दोनों दरवाजे खोलकर बाहर निकले। अभी किसी फरीक ने कुछ भी न कहा था कि एक साहब जो सारा मंजर देख रहे थे बोले, मौलाना यही वो मकाम है जहां दीन और दुनिया आपस में मिलते हैं। मौलाना मुस्कुराते हुए उन साहब के पास गए, हाथ मिलाए और कहा, मैं ये हादसा तो भूल जाऊंगा मगर आपका हसीन मजाक उम्र भर याद रहेगा, और सुभान अल्लाह कहते गाड़ी की तरफ लौटे। इस पर वो खातून बोली, ये हादसा मैं भी भूल जाऊंगी मगर मुझे नजरअंदाज करते हुए जिस तरह आप एक तमाशबीन की तरफ बढ़ गए, ये जख्म हमेशा ताजा रहेगा। हांगकांग की शाम की आज की महफिल आपने RTH के रेडियो 3 पर सुनी, जिसे पेश करने में तावुन था होम अफेयर्स डिपार्टमेंट हांगकांग का। ये नशियात इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक बरस के प्रोग्राम्स आर्काइव में सुनने के लिए विजिट कीजिए RTH के रेडियो 3 की वेबसाइट या डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्टफोन पर RTH के ऑन द गो या RTH के माइन नामी ऐप। आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह आइंदा इतवार 8 बजे की खबरों के फौरन बाद। अपने मेज़बान आबिद अली बेग को इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। शब बखैर और अल्लाह हाफिज़।

0: करके चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर इस है बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान,
1: पी आई पी अटरवेर बनिया,
0: पी आई पी अनोखान। आ ई ई आ आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली।
2: Oh, that track brings back so many memories of chalkboards and pop quizzes. Now, to explore what it is really like shaping young minds in North America, we're joined by an extraordinary lead.